0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: शुभकामना स्टोर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ सम्पर्क नम्बर 9863 69 13 50।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहनुभएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सक्सेस अपस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333383।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुखद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रिन्सु इन्टरप्राइजेस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर गकुल नेउपाने सम्पर्क नम्बर 98 41 038 739। हामी कहाँ पीपीआर पीवीसी पाइप लगायत हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससहा धादिङ प्रोप्राइटर काजीमान श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9847326775 9813335309। हामी कहाँ विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक ब्लकहरू पिल्लर टाइल सेलेप लगायत ब्लक सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै ढुवानीको पनि व्यवस्था छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 9843252638। यहाँ नयाँ साइकल सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससहा धादिङ प्रोप्राइटर काजीमान श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9847326775 9813335309। हामी कहाँ विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक ब्लकहरू पिल्लर टाइल सेलेप लगायत ब्लक सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै ढुवानीको पनि व्यवस्था छ।

0: जय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य जीवहरू व्यवस्थापन समिति तथा कर्मचारी साथीहरू शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहनुभएका नेपाली आमाबुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयनका साथै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संचालक समिति अध्यक्ष पवन थपलिया एवं साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धुसा धादिङ।
2: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि
1: संस्था लिमिटेड बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धुसा धादिङ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: शुभकामना स्टोर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ। सम्पर्क नम्बर 9863 69 13 50।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333383।

0: विजय दशमी सुबती पाउली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुखद मूल्य में बिक्री का साथ ही

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी। हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। के तपाईँ यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरबड्स फ्री
0: चार्जर स्पिकर ग्लास कभर इयरफोन्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट।
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। 5 बोतलमा गेम खेली 1000 सम्म जितौं।
2: तिम्रो मोबाइल पसल धादिङ बेसी पुछर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है।
3: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुखद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: होटल नमुना एन्ड लज प्रोपाइटर बुद्धिलाल श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 98 61 59 70 40। हामी कहाँ स्वादिष्ट खाना तथा नास्ता का साथ ही मिनी वस्तु टिकट र रिजर्व को समेत उचित व्यवस्था रहेको छ।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: न्यू डिजाइनर टेलरिंग एंड सटिंग सुटिंग सेंटर नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिङ प्रोपाइटर राहुल परियार सम्पर्क नम्बर 98 45 34 55 98 41 065 490।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रिन्सु इन्टरप्राइजेस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोपाइटर गकुल नेउपाने सम्पर्क नम्बर 98 41 038 739। हामी कहाँ पीपीआर पीवीसी पाइप लगायत हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: शाखा प्रबन्धक रविना लामिछाने नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स धादिङ।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: रमेश टेलरिंग एन्ड सटिङ सुटिङ सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी धादिङ। हामी कहाँ अर्डर अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी कपडाहरूको कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल तथा लेडिज जेन्ट्सका आधुनिक डिजाइन अनुसारका पोसाकहरू तयार गरिन्छन्। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: रेविका सुनसादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 सुगम टोल धादिङ। हामी कहाँ तपाईले रोजेको खोजेको जस्तो आकर्षक आधुनिक डिजाइनमा गरगहनाहरू बनाइनुका साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9869211377 9818320632।
3: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठपर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहनुभएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333883।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अनुग्रह सुनचारी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोप्राइटर सुरेश सुनार सम्पर्क नम्बर 97 45 33 58 68 98 19 81 88 16

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धारिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षित तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042। के तपाईं यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरपोड्स फ्री
2: चार्जर स्पिकर ग्लास कवर इयरपोड्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस् पाँचवटा बोतलमा गेम खेली 1000 सम्म जितौ
3: इन्द्र मोबाइल पसल दार्जिलिङ बेसी पुसर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111
1: सुन्नुहोस् त टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
4: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाजद्वारा सञ्चालित 24 घण्टा आकस्मिक सेवा सहितको एम्बुलेन्स सेवा चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9860574222 9818140153

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: करदछौ। बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042। के तपाईं यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरपोड्स फ्री
2: चार्जर स्पीकर ग्लास कभर इयरफोन्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट।
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% सम्म डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। पाँचवटा बोतलमा गेम खेली 1000 सम्म जितौ।
3: इन्द्र मोबाइल पसल दार्जिलिङ बेसी पुसर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है। विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाज द्वारा संचालित 24 घण्टा आकस्मिक सेवा सहित को एम्बुलेन्स सेवा, चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ, मोबाइल नम्बर 9860574422 9818140153।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावर में सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अनुग्रह सुनचारी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोप्राइटर सुरेश सुनार सम्पर्क नम्बर 97 45 33 58 68 98 19 81 88 16

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ। के तपाईँ यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरपोड्स फ्री
0: चार्जर स्पिकर ग्लास कभर इयरपोड्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट।
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। पाँचवटा बोतलमा गेम खेली 1000 जितौं।
2: इम्रो मोबाइल पसल दारिङ बेसी पुछर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है।
3: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शुभकामना स्टोर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ। सम्पर्क नम्बर 9863 69 13 50।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333383।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एसआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 9843252338। यहाँ नयाँ साइकल सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदीबहिनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333883।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्म

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: जय बजरंग ट्रेनिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: हिजै दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भा नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करद।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042। के तपाईं यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरबड्स फ्री
2: चार्जर स्पीकर ग्लास कवर एयरपोर्ट लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। पाँचवटा बोतलमा गेम खेली 1000 सम्म जितौ।
3: इन्द्र मोबाइल पसल दार्जिलिङ बेसी पुसर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111।
1: सुन्नुहोस् त टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है। विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाजद्वारा सञ्चालित 24 घण्टा आकस्मिक सेवा सहितको एम्बुलेन्स सेवा चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9860574222 9818140153।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अनुग्रह सुनचारी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोप्राइटर सुरेश सुनार सम्पर्क नम्बर 97 45 33 58 68 98 19 81 88 16।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 45 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुपथ मूल्य में बिक्री का साथ ही

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरान 5 बेनीघाट धादिङ प्रिन्सिपल डीपी सापकोटा सम्पर्क नम्बर 9841032042।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाज द्वारा संचालित 24 घंटा आकस्मिक सेवा सहित को एम्बुलेंस सेवा, चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ, मोबाइल नंबर 9860574422 9818140153।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: अनुग्रह सुनचादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोपाइटर सुरेश सुनार सम्पर्क नम्बर 97 45 33 52 68 98 19 81 88 16।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुपथ मूल्य में बिक्री का साथ ही

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: जय बजरंग ट्रेनिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धारिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षित तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावर लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
2: वर्षात को समय में पानी का स्रोत प्रदूषित होने गद पड़े पानी ने पाखा भित्ता में भैया फोहर बगाए पानी को स्रोत में मिशाई दक्षित भनिया खानेपानी को स्रोत दूषित होना पुग्स।
3: दूषित पानी को सेवन ने झाड़ा पखला हैजा आऊ जस्ता कई रोग संक्रमण हिसले पानी सदै शुद्धिकरण कर पानी विभिन्न तरीका शुद्धिकरण कर सकता।
2: शुद्धिकरण करने सब भाग सजिलो उपाय हो उमाल्ने पानी बकबकी उमालेर पिउने हो भने पानी में आंखा देखना न सकिने कीटाणु समेत मर्दछन्।
3: बजार में पाइने विभिन्न क्लोरिन को प्रयोग पानी शुद्धिकरण कर सकता। इसका क्लोरिन को प्रयोग का बारे में विक्रेता वा स्वास्थ्य कर्मी को सलाह लिनु पर्दछ।
2: सोडिस विधि पानी शुद्धिकरण करने अर्को सजिलो उपाय हो तर इसका लागि चर्को घाम र पारदर्शक बोतल होना जरूरी छ। सबैभन्दा पहिले प्रकाश छिर्ने बोतल राम्ररी सफा गर्ने, सफा गरिसकेको बोतलमा पानी भर्ने र बिर्को लगाउने, त्यसपछि पारिलो घाम लाग्ने ठाउँमा 7-8 घण्टा ढल्काएर राख्ने।
3: पानीलाई फिल्टर गरेर शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। बजारमा विभिन्न फिल्टरहरू पाइन्छन्। फिल्टर गर्नु भनेको पानीलाई छानेर सफा र सुरक्षित बनाउनु हो।
2: त्यसैले पानीजन्य रोगबाट बच्नका लागि पानी शुद्धिकरण गरेर मात्रै पिउने गरौं।
3: नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी। हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्स को जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: डायमंड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन। हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादीहरू पनि पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परीक्षण तथा कुखुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841486966 98511463।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हाम्रो फुटवेयर कलेक्शन प्रोप्राइटर विनयेश सराप, मोबाइल नम्बर 9812252553। हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्ड का जुत्ता चप्पल पाइनुका साथै कलेज स्कूल को जुत्ता चप्पलहरू होलसेल तथा सुपथ मूल्य में पाइन्छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: इन्द्र मोबाइल सेन्टर धादिङ मेची पुछा बजार, हामी कहाँ मोबाइल तथा मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर इन्द्र श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9849524111 9849524111।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: कोइराला भू सेवा केन्द्र थाबिनेसी धाबिङ, जग्गा राजीनामा पास अंश बन्द चाटफेर किनबेच नापजाप आदि लेखा परी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केदार कोइराला 9851144350, खगेन्द्र कोइराला 9845000372, राजन कोइराला 9850008072।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: द मैजिक फूड नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार मिलन टोल जारे बाटो, हामी कहाँ नेपाली चाइनीज इन्डियन खानेकुराहरूका साथै निशुल्क होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। यति मात्रै नभई शान्त वातावरणमा आकर्षक हलहरू पनि उपलब्ध छन्। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा, सम्पर्क नम्बर 0105204048 9851067725।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुपथ मूल्य में बिक्री का साथ ही

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा थर्ड पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावर में सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: डायमंड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिङ हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादीहरू पनि पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परिचय तथा कुखुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841689466 9551060463। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दाजुभाई सुन चाँदी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ सम्पर्क नम्बर 9866259090602527। हामी कहाँ तपाईँले रोजेको खोजेको जस्तो आकर्षक आधुनिक डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइनेको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। हाम्रो शाखा नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजारमा पनि रहेको छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावर में सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: धादिङ डेरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 पुछा बजार धादिङ हामी कहाँ पनिर प्रति किलो मात्र ₹700 पाइन्छ। सम्पर्क फोन नम्बर 0105211122 मोबाइल नम्बर 9851099671।
1: के तपाईँ यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरबड्स फ्री,
0: चार्जर, स्पिकर, ग्लास, कभर, इयरफोन्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट।
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। 5 बोतलमा गेम खेली 1000 जितौ।
2: Yes, so much that I can't hide it. इन्द्र मोबाइल पसल दार्जिलिङ बेसी पुस्तर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849424111 9849424111।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है।
3: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुपद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुपद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अनुग्रह सुनचारी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोप्राइटर सुरेश सुनार सम्पर्क नम्बर 97 45 33 58 68 98 19 81 88 16।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा थर पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षित तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भी दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।